ते मंदर दा बुआ बंद करन लगा ते दूर सारे राजे दा रथ आंदा दिस पिया। राजे नू देखिया ते देवा पंडित घबरा गया कि राजा आ गया, हार मैं अपने गल पा

मूर्तियां दे गलों हार ला के ते राज दे गल पा दिता। राजा चला गया, देवा पंडित ने सुख दा साह लिया के चलो बला टली। राजा अपने महलां विच चला गया, हार ला के राजे ने सामने रखिया। देवा पंडित बुजुर्ग सी, वाल चिट्टे सन, उस हार दे नाल दो चिट्टे तौले लगे हुए सन, चिट्टे वाल।

अज पहली वारी हार दे नाल दो वाल देखे ने ते ओ भी चिट्टे ते देवा पंडित बुजुर्ग है ओ दे वाल चिट्टे ने पत्थर दियां मूर्तियां नू ते वाल आंदे नहीं किधरे ए हार देवा पंडित ने अपने गल विच ता नहीं पाया राजे ने शक हो गया राजा कहन लगा चंगा फिर कल नू जाके पुछांगा पंडित नू कि ए वाल कित्थों लगे ने उधर देवा पंडित बेफिकर है पर राजा जिड़ा है ए हुण सोच रहा है कि ए वाल किधे ने उस देवा पंडित

देवा पंडित बड़ा बेफिक्र है कि कल दी गल आई गई हो गई। पर राजा पूछदा है

पंडित जिहड़ा है उदास हो गया कि हुण की होवेगा। फिर सोचिया कि इक्को ही रस्ता रह गया है कि हुण मैं अरदास करां। ओ परमेश्वर अरदास ते उठ के हो सकदा है मेरा गुनाह माफ कर देवे। देवा पंडित हाथ जोड़ के भगवान दे सामने बैठ गया। कहन लगा है भगवान सारी उम्र मैं तेरी सेवा की थी, कदी कोई सवाल नहीं मारे।

राजा आ पहुंचे है। देवा पंडित दी अखां बंद ने, उन्हों कोई पता नहीं राजे ने आना है। उदा मन जुड़ चुका है। राजा आया, राजे ने मंदिर दा टोकिया होया, बुआ खोलिया, ते की देखिया, पत्थर दी मूर्ति ते सफेद लम्मा दाड़ा आया होया। देवा पंडित वाल देखिया, ओ हाथ जोड़ के बैठा है, अखां बंद ने। राजे ने नमस्कार की थी, देवा पंडित नु हलाया, देवा पंडित ने अखां खोलियां।

देवा पंडित निहाल हो गया, ओ ता बलिहार जा रहे है, पर जेड़ा राजा सी उदे मन विच शंका पैदा हो गया। राजा कहन लगा, अज तक सुनिया नहीं के पत्थर दी मूर्ति नू दाढ़ी आई हो, ए कदी हो ही नहीं सकता। इस पंडित ने पत्थर दी मूर्ति

आवाज आई, राजन तेरी इच्छा सी कि मैं भगवान दे दर्शन सफेद दाढ़ी विच करा। तेनू दर्शन हो गए पर तू अंत लेना चाहिए, तू भरोसा नहीं कीता ते जेड़ा उदा अंत लेना चाहता है वो आप खत्म हो जाता है। गुरु साहब जी कहते अनंत को चाहन जो गए से आए अंत को आए। जिन्हें भी परमेश्वर का अंत लेना चाहिया वो आप ही खत्म हो गया। राजन आज तो बाद तेरा राज भी खत्म हो जाएगा। तो भगत नामदेव जी कह रहे ने कि देवा पंडित ने भावे अपराध किया सी पर उन्हें मन करके अरदास की ते उस देवा पंडित नु भी उस

इस तोते नु जदू उठाना है ता ए कहना है गंगा राम कहो राम राम। जे ता इनु राम राम जपावे ता तेरा उधार हो सकता है। गणका कहन लगी महाराज जिस तरह कहोगे मैं उसी तरह करांगी। महापुरुष अपना तोता इस गणका पापण नू दे गए ने। भाई गुरदास जी बयान करते

रोज सवेरे गनका उठ के असोता कहंदे ने जगा के तोते नु जगा के कहना गंगा राम को राम राम। रोजाना ही हुण पाप छड़ दिते ते तोते नु राम राम जपान लग पई ते एदी लिव तोते नु जपांदिया जपांदिया अपनी भी लग जांदी।

पर भगत जी ते भाई गुरुदास जी कहंदे ने अंतकाल जमजाल तोड़ नरके विच ना खादो सुगोता के उस गवेसवा ने राम किया ते जमा दा जाल तोड़ दिता नरका विच फिर ओ नहीं गई।

चंदन दा तिलक लगाण वास्ते कन सुनो ए जा रही है। कंस जिहड़ा सी कृष्ण भगवान दा मामा सी, पर जिथे कृष्ण भगवान अवतार सन उथे कंस बड़ा पापी और दुराचारी सी। ए कुबजा कंस नू टिक्का लगाण वास्ते जा रही है, उधरों कृष्ण भगवान एदे सामने आ निकले। कृष्ण भगवान दा रूप देख के, उन्हां दा प्रताप देख के कुबजा मालन कृष्ण भगवान दे सामने खलो गई। इन्ना मन विच प्यार ते श्रद्धा, ओ जिहड़ा तिलक कंस नू लाया करदी सी ओ कृष्ण भगवान दे मत्थे ते ला दिता ते गल विच हार भी पा दिता। ते कृष्ण भगवान इन्ने दयाल हो गए कि गनका पापण नू जिस तरह परमेश्वर ने तारिया, परमेश्वर दे नाम ने इसे तरह ही कुबजा ते भी ओ परमेश्वर अज दयाल हो गए ने। कृष्ण भगवान ने कुबजा दा एक हाथ फड़िया, अपना पैर कुबजा दे पैर ते रखिया ते हाथ फड़ के जोर दी तां नू हुजका जिहा मारिया ते कुबजा जिहड़ी मालन सी उहदा कुब कढ दित्ता, उहदा लक सिद्धा हो गया। ए इलाज ना कोई डाक्टर कर सकदा है ना कोई हकीम, पर उस भगवान ने एक हुजके दे नाल कुबजा मालन दा जिहड़ा लक सी ओ एकदम सिद्धा कर दिता। क्यों के परमेश्वर जी नू भेजदा है, ओ दुख सुख ओहो ही दिंदा है, ओ जिन्नू चाहवे ओनू दुख दिंदा है, जिन्नू चाहवे ओनू सुख दिंदा, ए ओदी मर्जी। कुबजा मालन दा उधार हो गया, अजामल पापी सारी उम्र पाप करता रहा, एक वारी नारायण किया ते एदा भी उधार परमेश्वर।

जानते हो मुकुट पे बदक एक शिकारी सी चरण कृष्ण भगवान दे एक रात कृष्ण भगवान जंगल विच लेटे हुए सन। अपने एक लत ते दूसरी लत रख के कृष्ण भगवान दे पैर विच पदम सी जिड़ा के बड़ा चमक रहा सी। रात दा वेला सी। ए बदक शिकारी शिकार खेडन वास्ते आया। कृष्ण भगवान दे पैर विच जिड़ा पदम चमक रहा सी इन्हें समझिया कि शायद कोई हिरण बैठा है। किसे हिरण दी अख पई चमकदी। उस बदक शिकारी ने निशाना लगा के तीर छड़िया। ओ जड़ा तीर सी कृष्ण भगवान दे चरणा विच आके लगा। बदक शिकारी आया हिरण दी जगह कृष्ण भगवान दे चरण जख्मी होए देखे ता ए भगवान दे चरणा ते डेग के रोन लग पया। कृष्ण भगवान ने कहा भाई तू रो ना।

क्योंकि साड़ा आखरी समा आ गया। असी हुण ए दुनिया छड़ के उस परमेश्वर दे कोल जाना है। भगत नामदेव जी कह रहे ने कि उस बद्धक शिकारी ने भावे कृष्ण भगवान दे चरणा विच तीर मारे है, पर कृष्ण भगवान ने उन्हों फिर भी गल दे नाल लाया ते उह मुकत पए ते उस बद्धक शिकारी नू भगवान ने तीर खा के भी मुक्ति दे दिती। ते भगत जी कहंदे ने हौ बल बल जिन राम कहे, मैं उन्हां तू बलिहार जाना जेड़ा इंसान मन करके

दासी सुत बिदर पांडवां दा मत्रेया भरा सी। पिता ते पांडवां दा जिहड़ा पिता सी ओही बिदर दा भी पिता सी, पर बिदर दी जिहड़ी मां सी ओ गोली सी नौकराणी। के भगवान ने दासी सुत दासी दे पुत्र बिदर नू भी तारिया, सुदामे नू भी तारिया, ते उग्रसैन जिहड़ा सी उग्रसैन को राज दिए। उग्रसैन कंस दा पिता, कृष्ण भगवान दा नाना सी। कंस ने अपने पिता उग्रसैन नू कैद कीता होया सी ते आप राजगद्दी ते बैठा जुलम कर रहा सी। कृष्ण भगवान ने कंस नू मार के अपने नाने उग्रसैन नू फिर

भाव के जप नहीं कीता, तप नहीं कीता, कुल भी चंगी नहीं, कर्म भी चंगे नहीं, पर नामे के स्वामी ते उतरे। पर नामदेव जो स्वामी ने नामदेव नू फिर भी तार दिता, ऐ भाई जे मैं तर गया ते तुसी लोग क्यों नहीं नाम जपदे, तुसी भी नाम जपो, तुसी भी तर जाओगे।

ना पीजे बार बैठे हैं सुन, ना पीजे रूपी माली रंग, ना पीजे तीर्थ पविये नंग, ना पीजे पेड़ मरे फिर सूर, कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच, रब नहीं पीजदा। ना पीजे केते होवे तूड़, कोई अपने आप नू तूड़ भी बना ले, पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन, लेखा लिखिए मन के पाए, जे तेरा मन ही नहीं होया

0: सब इस तुकनो गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

पूछे सोई फल पावे। जेड़ा ठाकुरां दी सेवा करदा है ओ जो मंगदा है ठाकुर उन्हां नूं दिंदा है। ए गल पुजारी ने तन्ने नूं कही।

ना ठाकुर रोटी खांदा है ते ना तन्ने ने रोटी खादी। अगला दिन भी लंघ गया, रात पै गई, ओ भी लंघ गई, तीसरा दिन चढ़ गया।

जद तक तू रोटी नहीं खावी ठाकुर भुखा मर जांगा ते मरांगा भी तेरे सिर चढ़ के बदनामी भी होवेगी ता तेरी होवेगी लोग कहेंगे के भगत भुखा